हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ दूरदर्शन

एडीटीए चैनल पर। श्रोताओं, आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र

0: सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देश भर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15-30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ दूरदर्शन के DTH चैनल पर। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।

आज के आपाधापी वाले दौर में किसी से पूछो क्या आप समय निकालकर प्रभु का ध्यान करते हैं, जवाब आएगा समय ही नहीं मिलता। एक बोध कथा है कि एक सेठ जी का सारा समय दौलत कमाने में निकल जाता था। एक बार उनके घर एक धर्म गुरु पधारे। उन्होंने कहा, सेठ जी, जीवन बड़ा ही अनमोल है और क्षणभंगुर भी, इसलिए ध्यान के लिए भी समय निकालें। सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी, मन तो बड़ा करता है, पर क्या करूं, मेरा लड़का अभी कुछ छोटा है, वह अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से चलाने लगे, बस 2-3 साल और मेहनत कर लूं, उसके बाद तो समय ही समय है। जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। धर्मगुरु ने मुस्कान फेंकी, तुम कैसे तय कर सकते हो कि तुम्हारे पास 2-3 साल का समय है? ईश्वर के विधान को तुम कैसे समझ सकते हो? खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। धर्मगुरु चले गए। सेठ जी व्यवसाय में मगन हो गए। उन्हें अपने स्वास्थ्य की बड़ी चिंता थी, इसलिए प्रतिदिन सुबह थोड़ा थोड़ा

पैदल घूम लेते थे। एक दिन टहल रहे थे कि एक ट्रक ने चपेट में ले लिया और वे परलोक सिधार गए। अंतिम समय में उन्हें गुरुजी का कथन याद आ रहा था, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। समय हमें निकालना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। जीवन भर हमें अच्छे कामों के लिए समय नहीं मिल सकेगा और हम अपने ही राग रंग में डूबे रहेंगे। प्रभु भक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप घंटों भक्ति में डूबे रहें और सारा कामकाज छोड़ दें। हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी दिनचर्या में अपने अपने ईश्वर को ध्यानस्थ होकर याद करें, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो या पारसी। अगर अपने प्रभु का ध्यान करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि हम उनके ही दिव्य गुणों से जुड़ते चले जाते हैं। मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, हमारा मन निरंतर निर्मल होता चला जाता है। हम ध्यानस्थ होकर सदाचारी मानव बनकर विश्व कल्याण की दिशा में प्रवृत्त होते हैं। ध्यान योग है, इससे जुड़ने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और आत्मा भी शक्तिशाली बनी रहती है, चरित्र भी मजबूत होगा। इसलिए समय निकालकर कुछ पल बैठकर हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, हम आत्ममंथन भी करते रहते हैं। तो चलिए आज की प्रातःकालीन शुभ घड़ी में ध्यान को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रण लेते हैं।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित श्री रामचरित्र मानस गान, कड़ी संख्या 147। कलाकार हैं जयराम और रविन्द्र साठे, संगीतकार सतीश भाटिया।

पुत्र वियोग की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे।

उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा।
1: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो उसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा। आज रात्रि 10 बजे का समय रहेगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश का। रात्रि 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन का। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। इन तीनों कार्यक्रमों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

सुबह 6:45 का समय रहेगा कार्यक्रम करसारी बात का, जिसके अंतर्गत बातचीत होगी मोटे और पौष्टिक अनाज के बारे में। रात्रि सुबह 7 का समय रहेगा हिंदी वार्ता का, जिसमें वार्ता होगी स्वतंत्रता संग्राम में नारी शक्ति के योगदान के बारे में। वार्ताकार होंगी हर्षा सोढ़ानी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:15 पर। फिल्म संगीत

आप पुनः सुन सकते हैं 12:40 पर, दोपहर 1 बजे, 3 बजे, शाम 4:30 और शाम 5:30 पर। सुबह 8:45 का समय रहेगा कार्यक्रम विजन एंड वॉइस का, जिसके अंतर्गत बातचीत होगी इमर्सिव जर्नलिज्म एंड इट्स रोल एंड स्कोप के बारे में। वार्ताकार होंगी तमीरा अंजुम कुरैशी। कार्यक्रम हेलो जयपुर आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 पर। हेलो जयपुर में फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 11 बजे। सिंधी कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:10 पर। महिला जगत का समय रहेगा 1:30 का। पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी लोक संगीत, गायक कलाकार होंगे ब्रिजमोहन डांगी। 3:30 का समय रहेगा एनसीआरटी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का।

कार्यक्रम कुछ तो है तुझसे राब्ता शाम 4 बजे। युवाणी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5 बजे। छह बजकर 43 मिनट पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। सात बजकर 30 मिनट का समय रहेगा किसान भाई बहनों के कार्यक्रम खेती बाड़ी का।

0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।
1: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम कर सारी बात।
4: काश्तकार भाई और बहनों, राम राम सा। आज आप बात करा मोटो और पौष्टिक अनाज इका काई फायदा है और क्यों यो जरूरी है, न सिर्फ खाबाड़ा के लिए बल्कि आपनों जो किसान है मोटा अनाजा ने नवाचार के रूप में नवाचारी खेती कर ज्यादा मुनाफो कहीं कमा सके है। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा भारत की ओर पेश की गई एक प्रस्ताव ने सर्वसम्मति हूँ स्वीकार कर लियो है। जी के मुजब वर्ष 2023 ने अंतर्राष्ट्रीय मोटो और पौष्टिक अनाज वर्ष यानी मिलेट ईयर घोषित कियो गयो है। ई प्रस्ताव ने लगे टगे 70 देश समर्थन भी दियो है। अब सवाल उठे है कि क्यों यो जो 2023 है इन्हें मोटो और पौष्टिक अनाज वर्ष घोषित कियो गयो है। तो इको उद्देश्य है बदलती जलवायु परिस्थितियां में मोटो अनाज और पोषण और स्वास्थ्य लाभ इरे सागे ही खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ावा के ताई यो कदम उठायो गयो है। मोटा अनाज रे माए ज्वार, बाजरो, मक्का, रागी अशान अनाज आवे है। जठे ताणी रागी री बात है, रागी ने आपने भारतीय मूल रो ही मान्यो जावे है। यो उच्च पोषण आलो मोटो अनाज है।

में 344 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम कैल्शियम पायो जावे है। दूसरो जिको अनाज है इमें अत्तो कैल्शियम कोनी पायो जावे। रागी में लोह तत्व री मात्रा 3.9 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम री आंकी गई है, जो बाजरा ने छोड़कर सगड़ा नाजासू ज्यादा है। जो मधुमेह का रोगी है बाने रागी खाबा की सलाह दी जावे है। पारंपरिक रूप रागी रो इस्तेमाल खिचड़ी जैसा आहार में कियो जावे है। जठे ताणी नवाचारा री बात है तो रागी ने रागी वर्मी शैली रे रूप में बाजार में तुरंत खाबा आला आहार का रूप में लियो जा रियो है। बाजरा की बात करा तो इका इस्तेमाल के ताई औद्योगिक उत्पादा में कियो जा रियो है। बाजरा का 100 ग्राम खाद्य हिस्सा में लगे टगे 11.6 ग्राम प्रोटीन, 67.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 8 मिलीग्राम लोह तत्व और 132 माइक्रोग्राम कैरोटीन मिल जावे है, जो अपनी आँखें ने सुरक्षित रखे है। भले ही इमें पाइटिक अम्ल, पॉलीफेनॉल और इमाइलेज जैसा कुछ पोषण निरोधी अवरोधक होवे है, पण पानी में भिगोबा के पाचे अंकुरण और दूसरा खाणु बनाबा की विधियां जो है इसू यो पोषण निरोधी तत्व कम कियो जा सके है। ज्वार री बात करा तो ये नाइजीरिया रो प्रमुख भोजन है। ज्वार रो औद्योगिक उपयोग और मोटा नाजा की तुलना में ज्यादा होवे है। इन्हें शराब उद्योग, डबल रोटी उद्योग, गेहूं जार संयोजन में भी काम में लियो जावे है। व्यापारिक रूप शिशु आहार बनाबा वाला जो उद्योग है बा में ज्वार चावली और ज्वार सोयाबीन संयोजन रो इस्तेमाल कियो जावे है। इमें 10.4 ग्राम प्रोटीन, 66.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2.7 ग्राम रेशा और जो दूसरा जी का सूक्ष्म और बृहत पोषक तत्व है वह मिल जावे है। अब बात करा कि यो जो मोटो अनाज है इमें ज्यादा समय तानी इन्हें राखियो को नहीं जा सके, तो फिर साल भर आपा मोटो अनाज खावा आपा ने पोषण मिले इके लिए कहीं करा खाद्य प्रसंस्करण की तरफ आपा कदम बढ़ावा। तो मोटा नाज पर आधारित प्रसंस्करण भोजन प्रणाली रो बाजार भी खूब फायदो देवे है काश्तकार ने और इकी तरफ रुझान भी बढ़ रहे है। मक्का, ज्वार और जो दूजा मोटा नाज है बांको उत्पादन भारत रे कुल खाद्य उत्पादन रो 1/4 है। इरे सागे देशी अर्थव्यवस्था में भी इको मोटो योगदान रहे है। इरे सागे सागे पारंपरिक पाक विधा में मोटा नाज ने काम में लियो जावे है। टाबरा का आहार बना वाला उद्योग भी मोटा अनाजा ने बहुत महत्व देवे है और इन्हें काम में लेवे है। दूसरा खाद्य पदार्थ का उत्पादन में आम मोटा अनाजा ने काम में लियो जावे है। अब रागी और गेहूं का मिश्रण सु निर्मित बर्मी शैली बाजार में मिले है, जिन्हें खाबा के ताई तैयार भोजन रूप में काम में लियो जा सके है। जटे तक बात करा पोषण निरोधी जो तत्व आम मोटा नाजा में आवे है बाने कईया हटावा इके ताई हवा लगाणो, सेकणो, अंकुरण, भिगोणो और मोल्टिंग जैसा कुछ पारंपरिक विधियां ने काम में लेवा हाँ, जिसू मोटा नाजा का गाढ़ापण में काफी कमी आ जावे है। गाढ़ापण में सबसे ज्यादा कमी मोल्टिंग के दौरान आवे है। अनाज रे अंकुरण रे पाछे और धूप में सुखाबा के पाछे ज्यादातर अवांछित एंजाइम नष्ट हो जावे है। मिश्रण रो गाढ़ोपण और अमाइलेज री मात्रा गैर मोल्टेड अनाज मिश्रण सु काफी कम हो जावे है। मोल्टेड मोटा अनाज शिशु आहार फार्मूला और साथ ही बूढ़ा व्यक्ति रे पोषण में भी काफी लाभ देवे है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पौष्टिक और मोटा अनाजा रो मुख्य उद्देश्य आम फसला का उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी करनो है। आ कार्यक्रमा के लक्ष्य ने प्राप्त करबा खातर कई तरीका की रणनीति अपनाई जावे है, जिमें क्रियावां के माध्यमो नवीनतम उत्पादन और संरक्षण तकनीक ने बढ़ानो, प्रमाणित बीजा की उपलब्धता में बढ़ोतरी कर बीज प्रतिस्थापना दर में सुधार लानो, उन्नत कृषि यंत्र वितरण और मशीनीकरण ने बढ़ावो देनो और सागे सागे जल अनुप्रयोग उपकरण के वितरण के माध्यमो ज्यादातर क्षेत्रा में खेती का दायरा में लार सूक्ष्म सिंचाई ने बढ़ावो देनो है। मोटा अनाजारा जो काश्तकार है और प्रसार से जुड़ेड़ा विस्तार कर्मी है बाको राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम

0: क्षमता और निर्माण ने बढ़ानो है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मायने दलहन और तिलहन रे सागई अंतर फसला के माध्यम मोटा और पौष्टिक अनाजारा खेतरा ने बढ़ानो भी एक उद्देश्य है। विश्व रा कुल उत्पादन में लगे टगे 15% री हिस्सेदारी रे सागे भारत मोटा पौष्टिक अनाजारा उत्पादन में दुनिया में अग्रणी है। अपना देश में 2019-20 रे दौरान 28.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य रा मोटा पौष्टिक अनाज रो निर्यात की हो गयो। भारत सु मोटा तौरु आयातित देश नेपाल, सऊदी अरब, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, ट्यूनीशिया, श्रीलंका, यमन, लीबिया, नामबिया और मोरक्को है। भारत विश्व में मोटा पौष्टिक अनाज रो दूसरो सेउ बड़ो निर्यातक देश है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 ने राष्ट्रीय मिलेट वर्ष रूप में मनायो गयो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पौष्टिक अनाजा रे तहत वर्ष 2018-19 सू 2020-21 रे दौरान 96,172 क्विंटल गुणवत्ता युक्त बीज रो वितरण कर संकर और अधिक उपज देना किस्मा ने लोकप्रिय कियो। जी में सू 11,214 क्विंटल संकर बीज है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन रे माए पौष्टिक अनाजा के तई 50 किसान उत्पादक संगठन FPO वर्ष 2018-19 सू वर्ष 2019-20 रे दौरान स्वीकृत किया गया। पौष्टिक और मोटा अनाज रे मायने 21,65,299 हेक्टेयर क्षेत्र में किसाना के खेता में नवीनतम तकनीक और प्रदर्शन वर्ष 2018-19 सू 2020-21 रे दौरान किया गया। कृषि उपकरण रे वितरण के माध्यम मशीनीकरण ने बढ़ावो भी दियो गयो। कुल 7,412.03 क्विंटल अतिरिक्त बीज उत्पादन कियो गयो। जी में सू वर्ष 2018-19 सू 2020-21 रे दौरान प्रजनक बीज केंद्र के द्वारा उत्पादित 2,473.04 क्विंटल प्रजनक बीज और 2019-20 रे दौरान बीज हब द्वारा उत्पादित 4,938.99 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीज शामिल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटर पौष्टिक अनाज रे अंतर्गत स्वदेशी बीजा के उत्पादन ने बढ़ावो दियो है और 25 गुणवत्तापूर्ण बीज हब और 18 प्रजनक बीज उत्पादन केंद्र स्वीकृत किया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम करसारी बात, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: विंशतिः षड्विंशतिः अपि पारितम्। राज्यसभया तत् ह्यः अनुमोदितम् आसीत् एवञ्च लोकसभया तत् पूर्वमेव पारितम् आसीत्। प्रशासनेन एकादश नूतनानि अन्ताराष्ट्रियपत्तनानि अधिसूचितानि येन ई वीजा धारकानां वैदेशिक नागरिकाणां भारतप्रवेशः सुलभः भविष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एतेषु नव भूपत्तनानि द्वे च विमानपत्तने सम्मिलिते स्तः। एतेषु भोपालस्य तिरुपतेः च विमानपत्तने तथा अटारी अगरतला इत्येतयोः भूपत्तनानि सम्मिलितानि सन्ति। मन्त्रालयेनोक्तं यत् नूतनानां पत्तनानां समावेशेन ई वीजा इत्येतस्य उपयोगिता आकर्षणञ्च अधिकं वर्धिष्यते। मन्त्रालयानुसारं भारतं प्रायः 95% यावत् ई वीजा आवेदनानि 270 होरातः न्यूनसमये निस्तारयति। नूतनपत्तनानां समावेशेन ई वीजा धारकाणां वैदेशिक नागरिकाणां प्रवेशाय अनुमतानां अन्ताराष्ट्रियपत्तनानां संख्या आहत्य 88 जाता। एतेषु 37 विमानपत्तनानि, 38 सामुद्रिकपत्तनानि तथा 13 भूपत्तनानि च सम्मिलितानि सन्ति। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अवदत् यत् प्रशासकीय ई मार्केट प्लेस जेम इतीदम् उच्चगुणवत्तायुक्तस्य उचितमूल्येन उचितसमये उचितोत्पादस्य क्रयणं प्रतिबिम्बयति। नवदिल्ल्यां जेम इत्यस्य 10 वर्षाणां पूर्त्युत्सवस्य अवसरे मन्त्री उक्तवान्। श्रीगोयलः स्मारितं यत् जेम इत्यस्य प्रवर्तनात् प्राक् सार्वजनिकधनस्य दुरुपयोगः भवति स्म, सुशासनस्य अभावः च आसीत्। श्रीगोयलः अवदत् यत् संचितरूपेण जेम इत्यनेन पटलेन 3 कोट्यधिकानाम् आदेशानां माध्यमेन 20 लक्षकोटिरूप्यकाणां वस्तूनां सेवानाञ्च क्रयणे साहाय्यं कृतम्। सः प्रतिपादितवान् यत् प्रथमाष्टवर्षेषु 10 लक्षकोटिरूप्यकाणां क्रयणं जातं, तदनन्तरं 10 कोटिरूप्यकाणां क्रयणं केवलं वर्षद्वयोः एव अभवत् इति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचलप्रदेशे पूर्व राजस्थाने च अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा सञ्चेतना प्रख्यापिता। ऋतुविभागानुसारेण अद्य अरुणाचलप्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गांगीय पश्चिमबंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, नवदिल्ली इत्येतेषां स्थलानां कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः सम्भाव्यते इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम हिंदी वार्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, हिंदी वार्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक वार्ता, स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियों का योगदान। वार्ताकार हैं हर्षा सोडानी।
3: नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम हर्षा सोडानी है। आज मैं बात करूंगी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान पर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान को शामिल किए बिना स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ही अधूरा हो जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महिलाओं द्वारा दिए गए बलिदान का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी बहादुरी, निस्वार्थ सेवा एवं बलिदान अतुलनीय है। हम लोगों में से बहुत से लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। महिलाओं ने अपने आत्मिक बल तथा पूरे साहस से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए महिलाओं ने बहुत सी प्राचीन परंपराओं को तोड़ा तथा अपनी परंपरागत घरेलू जिम्मेदारियों को भी छोड़ा। इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में महिलाओं का योगदान सराहनीय एवं वंदनीय है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के लिए यह बहुत आसान नहीं था कि वे एक बहादुर की तरह सियासत की लड़ाई लड़े, लेकिन उन्होंने लोगों के इस मिथ्य को तोड़ दिया कि महिलाएं केवल घरेलू कार्य करने के लिए होती हैं। अधिकांश महिलाएं आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति भी दी। उनमें से रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े आदर से लिया जाता है क्योंकि वे

अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। भारतीय समाज में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसका मुख्य कारण था पुरुष प्रधान समाज का होना। समाज में यह मान्यता प्रचलित थी कि महिलाओं का प्रमुख दायित्व घरेलू कामकाज संभालना है, इसीलिए उन्हें अन्य क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि पुरुषों के बीच उनको अपने विचार रखने की भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। पुरुषों के फैसले महिलाओं पर थोप दिए जाते थे, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति न देना, लड़कियों की भ्रूण हत्या करना बहुत आम बात थी। कई समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा ज्योतिबाबाई फूले ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत संघर्ष किया। इस काल में बहुत सी महिलाएं मार्शल आर्ट में पारंगत की गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, बीमाबाई होलकर, मैडम बीकाजी कामा आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में पुरुषों के साथ बहुत सारी महिलाओं ने भी भाग लिया, जिसमें सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, विजयलक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मृदुला साराबाई। राष्ट्रीय स्तर की महिला नेता है। राज्य स्तर की महिला नेताओं में दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से, रामेश्वरी नेहरू उत्तर प्रदेश से, सत्यावती देवी तथा सुभद्रा जोशी दिल्ली से, हंसा मेहता तथा उषा मेहता बॉम्बे से। भारतीय महिलाओं के साथ कुछ आयरलैंड की महिलाएं जैसे एनी वेसेंट तथा मार्गरेट का नाम लिया जाता है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। अब मैं आपको बताना चाहूंगी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनका नाम प्रमुखता से लिया गया है। 1925 में यह कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। बंगाल विभाजन के समय 1905 में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में प्रथम बार भाग लिया। दर्शना में नमक सत्याग्रह आंदोलन में ये इकलौती महिला सत्याग्रही थी। इन्होंने इस सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया। इसके लिए उन्हें जेल भेजा गया था। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीयता जागृत करने के लिए जगह जगह व्याख्यान दिया। भारतीय महिला संगठन बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के भारतीय विद्रोह में बहादुरी से लड़ी और राज्य हड़प नीति का विरोध किया। उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसी तरह ही कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इन्होंने हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और थिएटर के विकास के लिए काम किया। भारतीय सरकार ने इन्हें 1955 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया। एनी वेसेंट ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इनकी साथी मार्गरेट ने महिला मताधिकार का बिल तैयार किया और भारत महिला संगठन की भी स्थापना की। अब हम बात करते हैं विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में। श्रीमती पंडित अपनी राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यों के कारण 3 बार जेल गई। नमक सत्याग्रह के समय इन्होंने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने विदेशी शराब और कपड़ों को छोड़ने के लिए कई जुलूस निकाले। उसी तरह सुचेता कृपलानी भी हैं, जिन्होंने 1937 में सामाजिक जीवन में प्रवेश किया और राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हुए सन 1940 में फैजाबाद में सत्याग्रह किया और इनको 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर चुपचाप अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में अपना योगदान देती रहीं। साथियों, अब हम बात करते हैं सावित्रीबाई फूले के बारे में। यह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी,

उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया, उसके साथ ही बाल विवाह, जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। इसी तरह ही पंडिता रमाबाई ने भी विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की, महिला शिक्षा और मताधिकार को प्रोत्साहन किया व बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी निसंदेह भारतीय संस्कृति की जीते जागते मिसाल थे। वे एक समाज

0: संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरोजनी नायडू ने गांधी से प्रभावित होकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इसके साथ ही महिला मताधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष चुनी गई। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन में बहुत सारी महिला कार्यकर्ता आगे आई। उस समय भारतीय महिलाओं ने सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार के बंधनों को दूर कर भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि महिलाओं में सड़क से जेल तक किस प्रकार साहस के साथ आंदोलन किया। बहुत सारे संघर्षों और प्रयासों के बाद अंत में भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हजारों महिलाओं ने अपनी प्राणहुति दी। यदि कहा जाए कि केवल अहिंसात्मक आंदोलन से आजादी नहीं मिली, बल्कि महिलाओं के सक्रिय योगदान और बलिदान के चलते आजादी मिली, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो साथियों, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महिलाओं का योगदान अतुलनीय है।
1: स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियों का योगदान, अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। वार्ताकार थी हर्षा सुढ़ानी। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी वार्ता, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है।

0: अरे लल्लू की अम्मा। अरे कहाँ हो भाई? अरे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
1: खाना तो एकदम तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाई देती हूँ।
0: अरे भगवान, खेत में पानी देते देते हाथ तो बिल्कुल अच्छी तरह से धुल गए, ये देखो बिल्कुल साफ है मेरे हाथ।
1: फिर भी लल्लू के बापू, खाना खाने से पहले आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
0: वो भला क्यों?
1: साबुन से हाथ धोने पर हाथों पर चिपके सारे कीटाणु धुल जाते हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं।
0: अरे वाह लल्लू की माँ, अरे आज तो तू बड़े ज्ञान की बातें कर रही भाई, कहाँ से सीख कर आई ये सब बातें?
1: कल ग्राम सभा में डॉक्टर साहब भी सब बता रहे थे, और लल्लू के बापू मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि हमें खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
2: देखिए, सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। कई लोग हाथ धोने के नाम पर केवल उंगलियों के पोर धो लेते हैं और सोचते हैं कि हाथ धुल गया। हाथ तभी साफ होते हैं जब उन्हें साबुन से अच्छी तरह मल मल कर साफ पानी से धोया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हाथ धोने

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग और तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना डीडी उर्दू चैनल।
2: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ दूरदर्शन के DTH चैनल पर। श्रोताओं, अब समय हो चला है नए पुराने सदाबहार गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। और सावन शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर चलिए भोलेनाथ को मनाते हैं और सुनते हैं ये पहला गाना।

इस खूबसूरत गाने को आप सुन रहे हैं याराना फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, बोल अनजान के हैं और संगीत राजेश रोशन का।

श्रोताओं, सदाबहार गीतों और नगमों की इस कड़ी में आइए सुनते हैं अगला गाना राम तेरी गंगा मैली फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। बोल रविंद्र जैन के हैं और संगीत भी दिया है रविंद्र जैन ने।

0: फिल्म संगीत में इस गाने को आप सुन रहे हैं यलगार फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण और सपना मुखर्जी ने। बोल सुदर्शन फाकिर के हैं और संगीत दिया है चन्नी सिंह ने।
1: मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

फिल्म संगीत के सफर में अगला गीत आप सुन रहे हैं लव फिल्म से, जिसे गाया है एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा ने। बोल है मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत से सादा है आनंद मिलिंद ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और इसी कड़ी में आइए मिलकर सुनते हैं अगला गाना कामचोर फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार और अलका याग्निक ने। शब्दों की माला पिरोई है इंदिवर ने और संगीत से साधा है राजेश रोशन ने।

इस खूबसूरत सदाबहार नगमे को आप सुन रहे हैं मैंने प्यार किया फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। बोल इरशाद कामिल के हैं और संगीत से सादा है राम लक्ष्मण ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं अगला गाना राम लखन फिल्म से। इस गाने को अपनी आवाज दी है राम, मनहर और अनुराधा ने। बोल आनंद बख्शी से हैं और संगीत से सादा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से फिल्म संगीत।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: और श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस सफर में अगला और अंतिम गीत आप सुनिए अनाड़ी फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने। शब्दों की माला पिरोई है समीर ने और संगीत से साधा है आनंद मिलिंद ने।

0: उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमीर चैनल है। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार। समाचार 8 बजे हिंदी में, 8:15 पर अंग्रेजी में और 8:30 पर उर्दू में रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
6: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
5: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
7: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
8: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
5: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
9: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
5: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोता से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
3: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद।

0: फरवरी से खड़े हैं 1500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने 36वें में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes taxation and other laws amendment bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today if a lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the money bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The finance minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
2: The government has notified 11 more international ports enabling foreign nationals holding e-visas to enter India through these designated points. The new additions include 9 land ports and 2 airports. With this, the total number of international ports facilitating entry of e-visa holders has risen to 88. A report.
4: The Home Ministry said the new

0: Recording 25% excess rainfall from June 1st to August 10th. The Indian Express informs physicist Deepak Dhar wins 2026 DRAC medal. The theoretical physicist from Uttar Pradesh has been named the co-recipient of DRAC medal, one of the highest honours in the field. Asiatic land population rises from 523 in 2015 to 891 in 2025, noted Bhupendra Yadav in a social media post, reports the Statesman. India's success in conserving Asiatic lion is a proud testament to the country's commitment to wildlife and biodiversity. And finally, as AI grips world, thrill of collecting vintage iconic computers growing, writes the Times of India. The paper adds the enthusiasm for the history of computers and all the stuff around it is growing. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bund today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under 23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सारिफीन के लिए डिजिटल अदायगी का निजाम मुफ्त रहेगा। हुकूमत ने मजीद 11 बैनुल अक़वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है, जिससे ई वीजा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाजत होगी। झारखंड के तलबा एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तलबा पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद की अपील की है। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के जलजले में कम से कम 132 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और नाइजीरिया के शहर लागोस में मुनाकिदा 23 साल की उम्र तक की दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 4 तमगों समेत कुल 17 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने बिल पर बहस के बाद इसे लोकसभा को वापस भेज दिया था। लोकसभा ने इस बिल को पहले ही मंजूर कर लिया था, जिसके बाद इसे बहस के लिए राज्यसभा भेजा गया था। चूंकि ये एक मालियाती बिल है, इसलिए राज्यसभा इसकी दफात में सिर्फ सिफारिशात कर सकती है और उसे लोकसभा को वापस भेज सकती है। लोकसभा इन सिफारिशात को कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार रखती है। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने वाजे किया कि इस कानून के जरिए यूपीआई पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जा रहा है और डिजिटल अदायगी का निज़ाम सारिफीन के लिए बदस्तूर मुफ्त रहेगा। वजीर खजाना ने बताया कि यूपीआई से मुतालिक तरमीम सिर्फ एक कानूनी इल्तिज़ाम फराहम करती है और इसके जरिए खुद सारिफीन पर कोई टैक्स या ट्रांजेक्शन चार्ज आयद नहीं किया गया है। मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि हुकूमत का छोटे ताजरों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस आयद करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि छोटे ताजिर यूपीआई की जामे और सभी की शमूलियत वाली तरक्की में मरकजी हैसियत रखते हैं। हुकूमत ने ई वीजा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाजत देने की खातिर मजीद 11 बैनुल अक़वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है। इन नए मकामात में 9 जमीनी बंदरगाहें और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इस इजाफे के साथ ई वीजा रखने वाले अफराद के दाखिले की सहूलत फराहम करने वाली बैनुल अक़वामी बंदरगाहों की मजमू तादाद 88 हो गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: وزارت داخلہ نے کہا کہ نئے نوٹیفائی کیے گئے

0: मकामात में भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और नौजमीनी पोर्ट अगरतला अटारी दारंगा गेड़े गोजा डांगा हरिदासपुर जयगांव दाऊकी और मोरे शामिल हैं। वजारत ने कहा कि इस इकदाम से बैन अलाक़वामी मुसाफिरों में ई वीज़ा की सहूलत की मकबूलियत और इसकी इफादियत में मजीद इजाफा होगा। तकरीबन 95% ई वीज़ा दरख्वास्तों पर 72 घंटे से भी कम वक्त में कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाती है। 2014 में 43 मुल्कों के शहरियों के लिए शुरू की गई ई वीज़ा सहूलत को अब 172 मुल्कों के शहरियों तक तौसी दे दी गई है। फिलहाल ये सहूलत 17 ज़ेरी ज़ुमरों के तहत दस्तियाब है, जिनमें सियाहती कारोबारी तिब्बी तलबा ट्रांजिट क्रूज़ और कोह पैमाई के वीज़े शामिल हैं। वजारत ने बताया कि भारत अब तकरीबन 78% वीज़े इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करता है। नई दिल्ली से ईशान यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में केरला का नाम तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 और कौमी कोऑपरेटिव तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश करेंगे, जिसका मकसद कौमी कोऑपरेटिव तरक्याती कॉरपोरेशन एक्ट 1962 में मजीद तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में आज ट्रिब्यूनल्स इस्लाहात बिल 2026 को गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। कानून और इंसाफ के वजीर मम्लकत अर्जुन राम मेघवाल ये बिल पेश करेंगे। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में चेयरपर्सन्स और अराकीन की अहलियत तकर्रुरी और सर्विस की मुद्दत के साथ साथ ट्राइब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज में कारकर्दगी आज़ादी शफाफियत और यकसानियत को बेहतर बनाना है। इस कानून में कौमी ट्रिब्यूनल्स कमीशन के क्याम की तजवीज़ भी दी गई है। झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज कल तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहा। बीजेपी ने कल असेंबली घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज रियासत भर में बंद की अपील की है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कल तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहने वाले असेंबली घेराव के दौरान मुजाहिरीन असेंबली के गेट नंबर 1 के करीब पहुंच गए। इलाके को खाली कराने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। तलबा के एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो, जो गुज़िश्ता 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, असेंबली एहतजाज के दौरान तबीयत खराब होने के बाद रांची के सदर अस्पताल में दाखिल कराए गए। डॉक्टरों के जानिब से इनकी सेहत की देखभाल की जा रही है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बीजेपी ने एहतजाज करने वाले तलबा पर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल के खिलाफ आज रियासत भर में बंद की अपील की है और इम्तहानात में मुबैना बेजाबतगियों की CBI जांच के अपने मुतालबे को दोहराया है। रांची के डिप्टी कमिश्नर मंजुनाथ भजंतरी ने लोगों से अपील की है कि वो आज का बंद पुरअमन तरीके से करें। उन्होंने खबरदार किया है कि अमन और आमान में खलल डालने या तशद्दुद को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया ने रांची के अहम मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं और मुआशरे के तमाम तबकात से अमन बरकरार रखने और पुलिस और ज़िले इंतजामिया के साथ तआवुन करने की अपील की है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोलंबिया के मगरबी खित्ते में कल 7.4 शिद्दत के जलजले में कम से कम 132 अफराद की मौत हो गई, जबकि 570 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस जलजले का मरकज चोको खित्ते में सैन जोस डेल पाल्मर के करीब वाक़ था, जो राजधानी बोगोटा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर मगरब में वाक़ है। इस जलजले से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। कोलंबिया के सदर एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने जलजले के बाद बहाली की कार्रवाइयों के लिए माली मदद की फराहमी में तेजी लाने की खातिर इमरजेंसी का ऐलान किया है। इतला है कि मुल्क भर में 20 से ज्यादा म्यूनसिपल्टियां जलजले से मुतासर हुई हैं। पेरेरा, केपडो, काली और मनीजालेज शहरों को जलजले से नुकसान पहुंचा है। कोलंबिया के पड़ोसी ममालिक इक्वाडोर और पनामा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, अगरचे वहां किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगाई,

0: अरे लल्लू की अम्मा। अरे कहाँ हो भाई? अरे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
1: खाना तो एकदम तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाई देती हूँ।
0: अरे भगवान, खेत में पानी देते देते हाथ तो बिल्कुल अच्छी तरह से धुल गए, ये देखो बिल्कुल साफ है मेरे हाथ।
1: फिर भी लल्लू के बापू, खाना खाने से पहले आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
0: वो भला क्यों?
1: साबुन से हाथ धोने पर हाथों पर चिपके सारे कीटाणु धुल जाते हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं।
0: अरे वाह लल्लू की माँ, अरे आज तो तू बड़े ज्ञान की बातें कर रही भाई, कहाँ से सीख कर आई ये सब बातें?
1: कल ग्राम सभा में डॉक्टर साहब भी सब बता रहे थे, और लल्लू के बापू मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि हमें खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
2: देखिए, सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। कई लोग हाथ धोने के नाम पर केवल उंगलियों के पोर धो लेते हैं और सोचते हैं कि हाथ धुल गया। हाथ तभी साफ होते हैं जब उन्हें साबुन से अच्छी तरह मल मल कर साफ पानी से धोया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हाथ धोने के बाद अपनी शर्ट या पैंट से हाथ पोंछ लेते हैं, और घर की महिलाएं साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ लेती हैं। यदि ऐसे हाथ पोंछा जाए तो हाथ धोने का कोई फायदा ही नहीं है।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। श्रोताओं से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, उर्वरकों की बिक्री के लिए राज्य भर में जल्द ही ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली लागू की जाएगी। राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 20 दिन में 1624 हार्ड कोर अपराधियों को गिरफ्तार किया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में अच्छी बरसात से नदियों में पानी की बेहतर आवक, सबसे अधिक 30 सेंटीमीटर बारिश झालावाड़ के सुनेल में दर्ज की गई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप जारी की। इसके तहत 6000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। इस पहल से कृषि विद्यार्थियों को अब हर महीने DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी की आर्थिक मदद मिल सकेगी। श्री चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता के साथ कृषि शिक्षा को मजबूत करने का प्रमुख साधन भी है।
1: सत्र समय पर चले, परीक्षाएं टाइम पर हो, कई सुझाव मेरे बेटा बेटियों आए थे, उनको लागू करने की दिशा में काम निरंतर चल रहा है। लेकिन आज के युग में यह भी बड़ा अजीब लगता था, स्कॉलरशिप जाएगी स्टूडेंट्स के नाम, लेकिन जाएगी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में, फिर कॉलेज फिर ढूंढेगा। इतना समय लग जाता था कि जब तक स्कॉलरशिप पहुंचती थी तब तक पता चला परीक्षा वरीक्षाएं सब निपट गए। स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या था? सही समय पर स्टूडेंट्स की सही जरूरत पूरी हो जाए पढ़ाई लिखाई।
0: उर्वरकों की बिक्री के लिए राज्य भर में जल्द ही ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली लागू की जाएगी।

0: जाएगी। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सिरोही और राजसमंद जिलों में चलाया गया पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। इस व्यवस्था के तहत अब तक 68,000 किसानों ने 10,000 मीट्रिक टन उर्वरक खरीदा है। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली के तहत किसान खेत से ही ऑनलाइन बुकिंग कर QR कोड के माध्यम से फसल की वैज्ञानिक सिफारिश के अनुसार उर्वरक खरीद सकते हैं। इससे उर्वरक बिक्री में पारदर्शिता आएगी और कालाबाजारी तथा जमाखोरी और डायवर्जन पर रोक लगेगी। श्री मीणा ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और नियमित आपूर्ति जारी है। उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कल राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वेबसाइट शुरू होने से परिषद के कामकाज में गुणवत्ता, पारदर्शिता और आधुनिकता आएगी। वेबसाइट के माध्यम से आयुर्वेद नर्सिंग में प्रवेश, काउंसलिंग, पंजीकरण, संस्थाओं की संबद्धता और नर्सिंग परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। परिषद की गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण सूचना भी एक क्लिक पर मिल सकेंगी। गौरतलब है कि इस वेबसाइट को राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर और आयुर्वेद निदेशालय अजमेर की वेबसाइट से भी जोड़ा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत पिछले 20 दिनों में 1,624 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान में नशा तस्करों, साइबर अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 848 NDPS मामलों में 1,158 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध के मामले में 624 लोग पकड़े गए और लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पीड़ितों को वापस दिलाई गई। अवैध हथियारों के मामले में 396 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर 232,000 से अधिक कार्रवाई की गई। महिला सुरक्षा के तहत 2,835 मामलों में कार्रवाई की गई। और अब मौसम। प्रदेश में कल कई स्थानों पर अच्छी बरसात हुई। हाड़ौती अंचल में जमकर बादल बरसे। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों में लगातार बरसात से नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ गए। तेज बरसात से आम जीवन भी प्रभावित रहा। कोटा के दरा घाटी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के कारण यातायात बाधित रहे। बूंदी में भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार झालावाड़ के सुनेल क्षेत्र में बहुत अधिक बरसात हुई और वहां 30 सेंटीमीटर पानी बरसा। झालावाड़ के बकानी और पिरावा में 25 सेंटीमीटर से अधिक बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कोटा के दिगोद, रामगंज मंडी, सांगोद और चेचट में भी भारी बरसात हुई। करौली में देर रात झमाझम बरसात हुई। विभाग ने आज भी हाड़ौती अंचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। वहीं लगभग 20 स्थानों के लिए हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। कल से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। बड़े पुल, बिजली संयंत्र और पाइपलाइन जैसी संरचनाओं की सुरक्षा में वेल्डेड जोड़ अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं जोड़ों को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए IIT जोधपुर के वैज्ञानिक वेल्डिंग की नई तकनीक और सामग्री विकसित करने पर शोध कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मैकेनिकल विभाग की शोध टीम समुद्री और ऑफशोर क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए हल्की और मजबूत कंपोजिट सामग्री विकसित करने पर काम कर रही है। इससे कठिन परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाली संरचनाओं को और अधिक सुरक्षित तथा टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकेगी।
1: वैज्ञानिक रेड ऑक्साइड जैसे प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल खनिजों का इस्तेमाल कर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड विकसित कर रहे हैं, जिससे जोड़ अधिक मजबूत और टिकाऊ होंगे। टीम ऐसी वेल्डिंग सामग्री और तकनीक विकसित कर रही है जिसका इस्तेमाल अत्यधिक तापमान, दबाव और जंग वाली परिस्थितियों में किया जा सके। इसका लाभ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्रों, पाइपलाइनों व समुद्री संरचनाओं को मिल सकता है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: पंच गौरव कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब पंच गौरव के तहत चिन्हित उपज और वनस्पति प्रजातियों की प्रसंस्करण इकाई

0: इकाइयों को भी नीति के तहत लाभ और प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और किसानों तथा उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। नीति के तहत भरतपुर में शहद और कदम्ब, अलवर में प्याज और अर्जुन तथा जयपुर में आंवला और लहसोड़ा से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों को फायदा पहुंचेगा। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर नमन किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वतंत्रता के लिए अल्पायु में दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान सभी को राष्ट्र सेवा और देशभक्ति के पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, उर्वरकों की बिक्री के लिए राज्य भर में जल्द ही ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली लागू की जाएगी। राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 20 दिन में 1624 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में अच्छी बरसात से नदियों में पानी की बेहतर आवक, सबसे अधिक 30 सेंटीमीटर बारिश झालावाड़ के सुनेल में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
5: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?

अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है और लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। एक जबरदस्त अंदाज लिए और दमदार लाइनों के साथ गुड मॉर्निंग नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के फेवरेट शो हेलो जयपुर में, और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त ऋतु धिंगड़ा की आवाज ओनली ऑन 101.2 FM। दोस्तों, कैलेंडर के पन्नों में आज की तारीख है 11 अगस्त। वैसे तो कैलेंडर के साल हर 365 दिन होते हैं, लेकिन कुछ तारीखें इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं, और 11 अगस्त भी ऐसी ही तारीख है। और दोस्तों, जी हाँ, कैसे? तो दोस्तों सुनिए, इस तारीख का कुछ भावुक कनेक्शन यूं है कि इसी दिन बॉलीवुड के ओरिजिनल अन्ना यानी हमारे फिट और कड़क सुनील शेट्टी साहब का जन्मदिन है।

सुनील शेट्टी साहब का जन्मदिन है और इत्तेफाक तो देखिए, आज ही के दिन 11 अगस्त 2020 को शब्दों के जादूगर, मुशायरों के सुल्तान आदरणीय राहत इंदौरी साहब ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा। यानी एक ओर तो जिंदगी की शुरुआत का जश्न है, तो दूसरी ओर एक मुकम्मल जिंदगी के सफर का ठहराव, जहां एक तरफ तो राहत साहब का वो तेवर और वो कड़क अंदाज सामने आता है जिसका अंदाजा आपने शुरुआती लाइनों से लगा लिया होगा, और दूसरी ओर हमारे अन्ना का वो जबरदस्त अंदाज और धड़कन वाला इश्क तो याद आता है। तो दोस्तों, जहां एक और मोहब्बत की इसी धड़कन को पर्दे पर निभाने वाले सुनील शेट्टी साहब का जन्मदिन है, तो वहीं शब्दों से मोहब्बत को सिखाने वाले राहत साहब की यादें हैं। तो आज लगभग इस एक घंटे के सफर में हम इन दोनों दिग्गजों की जिंदगी के अनकहे हिस्सों की और अनकहे किस्सों की बात करेंगे। तो दोस्तों, जाइएगा नहीं, मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद ओनली ऑन 101.2 FM।

0: तुम रहते हो।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रोग्राम हेलो जयपुर। और आज के सेगमेंट में हम पहले बात करेंगे राहत इंदौरी साहब की, जो मुशायरों के रॉक स्टार कहे जाते हैं, जिन्होंने आज ही के दिन 11 अगस्त 2020 को दुनिया को अलविदा कहा था। उस दिन मानो यूं लगा कि मुशायरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खामोश हो गया हो। वो सिर्फ एक शायर नहीं थे, जब वो स्टेज पर आते तो कई रॉक स्टार उनके आगे फीके पड़ जाते। उनका हाथ हिलाकर पढ़ने का अंदाज, वो शेरों की कड़कड़ाहट, और जब उन्होंने ये लिखा कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारों कि मोहब्बत करने वाला जा रहा है, जब उन्होंने ये लिखा तो महफिल में तालियों की गूंज और आंखों की नमी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उनका समाज और वक्त की नब्ज पर चोट करना, वो बेबाक अंदाज, ये मिलना आज बहुत मुश्किल है। तो चलिए उनकी यादों में खोते हैं और सुनते हैं उनकी याद दिलाता एक बेहतरीन गाना। ब्रेक के बाद करते हैं बात कुछ अनोखे किस्सों की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमी चैनल से प्रोग्राम हेलो जयपुर, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ऋतु। और हेलो जयपुर के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं राहत इंदौरी साहब की। बहुत से लोग उन्हें सिर्फ मुशायरों के मंच से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड को एक नई और बढ़कर सुपरहिट गाने दिए हैं। जो अभी आपने गाना सुना वो भी उन्हीं का लिखा हुआ था। इसके अलावा मुन्ना भाई MBBS का गाना, एम बोले तो मैं मास्टर, मिशन कश्मीर का बूमरो और इश्क का नींद चुराई मेरी, ये सभी गाने उन्हीं की कलम से निकले थे।

वेलकम बैक टू 101.2 FM। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे राघत इंदौरी साहब की। वो शब्दों के ऐसे जादूगर थे कि गंभीर से गंभीर बात को भी आसानी से कह देते थे। उनके रोमांटिक अंदाज का वो शेर कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। वाकई वो शब्दों का समंदर ही नहीं, वो शब्दों के सैलाब थे। आइए इसी बात पर सुनते हैं उनका ये सुपरहिट गाना और फिर ब्रेक के पार चलेंगे बॉलीवुड के एक्शन हीरो और ओरिजिनल अन्ना के पास। जाइएगा नहीं, सुनते रहिए 101.2 FM।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल यानी 101.2 एफएम पर और आप इस वक्त जुड़े हैं मेरे यानी ऋतु के साथ। हेलो जयपुर के सेगमेंट में 11 अगस्त की कड़ी को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं उस शख्स की जिन्होंने 90 के दशक में जब स्क्रीन पर एंट्री दी तो भाई बड़े बड़े विलन्स के पसीने छूट गए। जी हाँ, आज जन्मदिन है बॉलीवुड के असली अन्ना का यानी सुनील शेट्टी साहब का। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जब सुनील शेट्टी ने बलवान फिल्म से डेब्यू किया तो कड़क बॉडी और लाजवाब एक्शन से एक नया ट्रेंड उन्होंने सेट कर दिया था। मोहरा, सुरक्षा रक्षक और फिल्म बॉर्डर के देशभक्त सैनिक भैरव सिंह को तो भला कौन भूल सकता है। उनका वो डायलॉग आज भी रोंगटे खड़े कर देता है कि ये धरती मेरी माँ है और मेरी माँ के सामने कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पर्दे पर वो जितने एक्शन पैक्ड दिखते हैं, जितने कड़क दिखते हैं, असल जिंदगी में अन्ना उतने ही शांत और जमीन से जुड़े इंसान हैं। चलिए उनके इस एवरग्रीन अंदाज को सेलिब्रेट करते हैं और सुनते हैं बॉर्डर फिल्म से उन्हीं पर फिल्माया गया ये खूबसूरत गाना।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो जयपुर, और इस सेगमेंट में बात हो रही है बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी की। दोस्तों, आपको हेरा फेरी में श्याम की कॉमेडी तो याद है ना? जो इंसान फिल्मों में विलन को मारता पीटता है, जब वो श्याम बनकर बाबू भैया और राजू के बीच फंस जाता है तो थिएटर में हंसी ठाके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ने ये प्रूव कर दिया कि उनका कॉमिक टाइमिंग भी उतना ही कड़क है जितना कि उनका पंच। लेकिन फिल्मों से अलग, क्या आप जानते हैं कि सुनील शेट्टी सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक हैं? उनके अपने रेस्टोरेंट, प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, और साथ ही साथ वे इन्वेस्टमेंट का भी काम करते हैं, और फिटनेस के नाम पर तो उनकी उम्र सिर्फ एक नंबर है। आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माया गया ये खूबसूरत गाना।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: वक्त का पहिया भी चलता रहता है दोस्तों, और हमारा ये एपिसोड भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। पर एक बात तो है कि ज़िंदगी के रंग भी कितने अजीब हैं। जहाँ एक और हम राहत साहब की याद में थोड़े भावुक हैं, तो सुनील शेट्टी के जन्मदिन की खुशी। इन दोनों दिग्गजों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो मुकाम हासिल किया है वो सिर्फ जुनून और कड़ी मेहनत की वजह से। जिंदगी की इसी जद्दोजहद पर राहत साहब का एक शेर याद आता है कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो और